0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
7: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है की स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी बड़े पदाधिकारी गए हुए हैं।
6: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran. Explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Masters Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
10: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
10: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around.
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
10: Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from 15th of this month till 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability.
2: Currently, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of the last month. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from the date of receipt of such stock. The sugar dealer shall not also keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of 2,000 quintals. However, the stock holding limit shall remain at 4,000 quintals for Kolkata and its extended metropolitan areas considering the specific market requirements of the region. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the Kolkata area is sourcing sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra and supplying to the eastern part of the country, including the northeastern region. With Bhanu Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
10: The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the progress of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana at a meeting in New Delhi yesterday. The meeting focused on accelerating implementation of the scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district-level performance for farmers. More from our correspondent.
11: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that the average score of the 100 districts across the 6 objectives of the scheme increased from 22.54 in April 2026 to 38.85 in July 2026, an improvement of 16.31 points. The ministry said that the scheme is being implemented through the convergence of 36 central schemes of 11 ministries and departments along with the state schemes and private sector participation. A total of 121 indicators comprising 74 output indicators and 47 outcome indicators have been identified across the 36 schemes for monitoring progress against annual targets. The review emphasized on strengthening the monitoring framework to move beyond tracking activities and expenditure towards measuring outcomes and the actual benefits reaching farmers. Dhan Dhanya Krishi Yojana was approved by the Union Cabinet last year and was launched on 11th October 2025. Shiva Mishra, Akashvani News, Delhi.
10: Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Raipur. The convocation will mark a significant milestone in the institute's academic journey, with degrees being conferred on graduating students from undergraduate, postgraduate, super specialty, doctoral and allied health sciences programs in the presence of distinguished dignitaries. This is Akashvani giving you the news.
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube. For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on BB Shabd.
10: US has begun fresh strikes on Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC targets inside Iran. Iranian media reported that explosions were heard in Bandar Abbas, Hormuz, Asaluye, Jiroft, Khesham Island, Konark, Chabahar, Jasak, Sirik and Lawan. The US Central Command said it completed the wave of strikes against Iranian military targets, which included air defense sites, mine laying capabilities and communication sites among others. It said that the strikes follow recent attempted attacks by IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members. Iran's foreign ministry said that the US strikes hit a home hosting a wedding ceremony in the city in Kuheshtak, resulting in death of 4 civilian and over 50 injuries. US President Donald Trump, in a post on Truth Social, has warned that any retaliation by Iran against the very justified attack will see a stronger response by Washington. In response, Iran's IRGC
12: claimed an attack on U.S. military barracks at Jordan's Camp Titan. Iran's army said it targeted U.S. forces stationed at Bahrain's Sheikh Isa Air Base. Kuwait's army said the country's air defenses responded to attacks by hostile drones from Iran. A 19-member Indian forensic team has begun analysing DNA samples alongside foreign experts. Alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Indian Embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in Kumaltar area of Kathmandu Valley. The Indian experts are working with their counterparts to speed up the processing of DNA samples collected from flood-affected areas and help establish the identities of victims and missing persons. The deployment of Indian forensic team is part of ongoing efforts to support Nepal in the aftermath of the recent flash floods, which caused significant loss of life and left several people unaccounted for. India and the US have agreed to work more closely on critical minerals following a meeting between Finance Minister Nirmala Sitharaman and US Treasury Secretary Scott Bessent. The agreement aims to strengthen the long-standing economic partnership between the two countries. The two leaders met on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, North Carolina yesterday. Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will be on a three-day visit to India beginning today. During the visit, he will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi to discuss the entire spectrum of bilateral relations and regional and global issues of mutual interest. The India Meteorological Department IMD has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi today. Amid the threat of flooding in Bihar's border districts following floods in Nepal, severe erosion along the Ganga in Bhagalpur has raised concern. In Shankarpur of Kharik block, the situation remains sensitive due to the strong current and pressure of the river. More from our correspondent.
6: Severe erosion along the Ganga has washed away an old Durga temple, a Hanuman temple and around 500 meters of Zamidari embankment in the Navgachhia block. People from the affected areas have been shifted to safer locations. Teams of the Water Resources Department are working on a war footing to control the erosion. Senior officials and engineers are present at the site and are continuously monitoring the situation. Water Resources Minister Vijay Kumar Chaudhary said that the erosion has intensified due to an unexpected change in the course of the Ganga. He said all possible efforts are being made to check the erosion and situation is being closely monitored. Meanwhile, a rise in the water levels of major rivers has led to flooding at several places in Saran, Vaishali, Begusarai, Buxar, Jahanabad, Nawada and Aurangabad districts. The administration and water resources department are maintaining close vigil in vulnerable areas. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
12: In badminton, India's leading shuttler Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen, Guangdong Province. Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in action in men's doubles. Earlier, Unnati Huda has made an early exit from the tournament yesterday after she lost to South Korea's Kim Jae-yeon in straight games in the opening round of the women's singles. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
13: Thank you, Shagun. Prime Minister Narendra Modi asks SCO member nations to unite in fight against terror, shun double standards, resolve conflict via dialogue, respect sovereignty, leads the Asian age. All systems are go, stormproof economy, August queues lead to growth. Headlines the Economic Times adding several macro indicators bring further economic cheer. GST mop-up grows 15%, car sales zoom and other signals stay green on resilience. Strength. In a historic milestone for the Indian Air Force, Air Vice Marshal Shakti Sharma has become the first woman officer, non-medical, in the country's armed forces to attain the rank of Air Vice Marshal or equivalent, informs the Pioneer. And finally, scientists from the Zoological Survey of India in collaboration with ICAR, Centre Marine Fisheries Research Institute and international experts have discovered a new species of deep sea skate in the Arabian Sea off India's southwestern coast informs the Pioneer. And with that, it's back to you, Shagun.
10: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Masters Super 750 in Shenzhen today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब भाई? क्या हाल है? सितंबर भी शुरू हो गया, ये साल मानो चुटकियों में निकल गया। बस कुछ ही पल में दिसंबर आ जाएगा और फिर हो जाएगा हैप्पी न्यू ईयर भी शुरू। और अब तो वक्त है भाई, बहुत सारे त्यौहार शुरू होने वाले हैं, कुछ शुरू हो चुके हैं। और आप सबका क्या हाल है, क्या प्लानिंग है आप सबकी, बताइए बताइए। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल, आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई। और मस्त मुंबई में मुंबई के मतवाले राहियों के बारे में आपको बताऊंगी, लोकल ट्रेन के किस्से लेकिन कुछ अलग हटके। कौन से हैं ये किस्से, जानने के लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मैं खत्म, तो खेल खत्म।
1: ओ वेलकम बैक। खेल तो अब शुरू हुआ है भाई, सब त्योहार तो अब शुरू हुए हैं। जन्माष्टमी से होगी शुरुआत, नवरात्रि, डांडिया, डांडिया की धूम, मस्ती, पूजा पाठ, साथ में दिवाली, दशहरा, उफ मज़ा ही आने वाला है, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और मुंबई फिर से जगमगाने वाली है, खूबसूरती से, लाइट से सजने वाली है। आप सब कितने तैयार हैं? वैसे बात अगर तैयारी की हो तो आपको ट्रैवलिंग के लिए लोकल ट्रेन्स का इस्तेमाल तो करना पड़ता है। अब जब आप लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे किस्से ऐसे हो जाते हैं जो कई बार हमारे दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप जो है जाना कहीं और है और पहुंच कहीं और जाते हैं क्योंकि आपकी आंख लग जाती है। कई बार कुछ अजीबोगरीब किस्से हो जाते हैं। कई बार आपने किसी सेलिब्रिटी को भी स्पॉट किया होगा लोकल ट्रेन में, किया है कि नहीं? तो बस कुछ ऐसे ही किस्से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, लेकिन आम आदमी के नहीं, आम आदमियों की तरह ट्रैवल करने वाले उन सेलिब्रिटीज के, जिनके किस्से भी कुछ कम मजेदार नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ यहीं 107.1 FM रेनबो पर, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल, आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।

क्या करेंगे जब आप बैठे चर्च गेट से और अंधेरी या बांद्रा जाने की जगह आप पहुंच गए सीधा विरार, और फिर जब आप विरार से दोबारा बैठे वापस अपने घर जाने के लिए तो फिर पहुंच गए चर्च गेट, क्या करेंगे आप ऐसे हाल में? बताइए भाई। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे एक सुपरस्टार के साथ में, जो बैठे तो थे चर्च गेट से अपने घर की तरफ जाने के लिए, लेकिन पहुंच गए थे विरार, और फिर दोबारा विरार से पहुंच गए चर्च गेट, लेकिन अपने घर ना पहुंच पाए, और फिर उन्होंने क्या किया कि जाके भाई वापस से अपना कॉलेज अटेंड कर लिया। दरअसल एक सर्वे के दौरान पूछा गया था कि सलमान खान जी से पूछा गया था कि क्या आपने कभी लोकल ट्रेन में सफ़र किया है, तो भाई इनके पास तो बहुत सारे किस्से थे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो इन्होंने सबके साथ में साझा किए थे। बल्कि एक शो पे इन्होंने खुद सामने से कहा था कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो मुंबई की लाइफलाइन है, और हम तो सब जानते ही हैं कि हज़ारों लाखों लोग इसमें हर रोज़ जो है ट्रैवल करते हैं, और अब उस लिस्ट में हमारी मेट्रो ट्रेन्स का नाम भी जो है शामिल हो गया है। तो हुआ ये था कि अपने कॉलेज के दिनों में सलमान खान साहब चर्च गेट की लोकल से अपने घर जाते थे। अब एक दिन साउथ मुंबई से उनको अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना था, लेकिन उनकी आखिरी लोकल मिस हो गई थी, तो उन्होंने पहले तो स्टेशन पर बैठकर पहली लोकल आने का इंतजार करने का फैसला किया ताकि वो अपने घर जा सके। अब वो इतना थक गए थे कि जब वो पहली लोकल आई तो वो विरार वाली ट्रेन में चढ़ गए और सो गए। अब जब उनकी आंख खुली तो पता चला जनाब पहुंच गए थे विरार। अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, फिर वापस उसी ट्रेन में बैठे और फिर से सो गए, और इस बार वो फिर से चर्च गेट पहुंच गए। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब वो यहाँ से सीधा पहुंचे अपने कॉलेज, जाके उन्होंने लेक्चर अटेंड किया और उसके बाद में घर गए। तो ऐसा जो है हमारे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी जो है ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि सो गए होंगे और पहुंचना होगा कहीं और पहुंच गए होंगे कहीं और। तो भैया ऐसा होता रहता है, और यही तो मज़ा है लोकल ट्रेन का कि वहां पर जितनी अच्छी नींद आती है ना, शायद वो घर पर भी नहीं आती। ऐसा है आपके साथ भी?

तो जो भी पल आपको मिले ना, उन्हें जरा करीब से और जरा नसीब से उन्हें अपना लीजिए, क्योंकि ये पल बड़ी मुश्किल से जो है हासिल होते हैं हर किसी को। तो भाई बहुत जरूरी होता है कि आप इन पलों को अपने दिल में सहेज के और समेट के रख लें। वैसे हम बात कर रहे थे उन सभी किस्सों की जो लोकल ट्रेन में हुए हैं हमारे प्रिय सेलिब्रिटीज के साथ में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में बहुत सारे किस्से जो है हुए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे किस्से मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। सोचिए कभी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको अपनी बगल वाली सीट पर दिख जाते हैं बच्चन साहब, क्या रिएक्शन होगा। और यही नहीं, वो आपका जो है आपके लिए आपके सामने जो है वो गाना भी गाते हैं। बताइए बताइए जरा कैसा रहा होगा वो समा, कैसा रहा होगा वो मंजर। ऐसा हुआ है मुंबई की लोकल सीट में, आपकी किस्मत ही बदल जाए अगर आपको ऐसा लगे आपको जो है बच्चन साहब सामने से मिल जाए, है ना। तो 2015 में कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था जब बच्चन साहब ने सीएसटी से भांडुप तक लोकल ट्रेन में सफर किया था, और यात्रियों के बीच में एक लोकल गिटारिस्ट थे सौरभ निम्बनकर, उनके साथ उन्होंने गाना भी गाया था। मकसद था उस कलाकार को उसके नेक काम में सपोर्ट करना। क्या था ये नेक काम, क्या है ये पूरी कहानी बताऊंगी आपको, बने रहिए हमारे साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ और मैं आपको बता रही हूं लोकल ट्रेन के वो किस्से जिनमें हमारे सेलिब्रिटीज ने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया था। तो भाई दरअसल बच्चन साहब वाला किस्सा कुछ यूं है कि सौरभ निंबकर मुंबई की लोकल ट्रेनों में गिटार बजाकर और गाना गाकर यात्रियों के लिए पैसे जुटाते थे और ये रकम वो कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों की मदद में देते थे। तो सौरभ साहब जो है वो अमिताभ बच्चन जी के एक शो में आए थे और वहां पर उनकी कहानी से प्रभावित होकर बच्चन साहब ने तय किया कि वो खुद उनके साथ लोकल ट्रेन में सफर करेंगे और खास बात ये थी कि ये सौरभ के लिए बिल्कुल सरप्राइज था। तो बच्चन साहब ने वीटी से यानी कि जिसे हम अब कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से भानु तक के लिए लोकल जो है लोकल ट्रेन में उनके साथ सफर किया और यही नहीं गिटार पर उनके साथ गाना भी गाया और उन्होंने यात्रियों के लिए वही अपना फेवरेट सॉन्ग गाया जो अक्सर गाते हैं और लोग अक्सर उस गीत की उनसे डिमांड भी करते हैं जो है रंग भर से भीग चुनर वाली रंग भर से। सोचिए क्या नजारा रहा होगा, वो कितना मजा आया होगा। बल्कि बच्चन साहब ने इसके बारे में खुद जो है ट्वीट भी किया था और सौरभ को सपोर्ट करने के लिए वो इस तरह से गए थे लोकल ट्रेन के अंदर। तो भाई मायने रखता है किसी के लिए इतना करना। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से और हैं, अनिल कपूर साहब से जुड़ा किस्सा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ा किस्सा है और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं मेरे पास मेरे पिटारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको रहना होगा हमारे साथ साथ क्योंकि ऐसे किस्से आपको सुनने के लिए सिर्फ यही मिल सकते हैं क्योंकि ये है मस्त मुंबई, मुंबई के मतवालों की मुंबई। फिलहाल थोड़ी सी धूम मचा लेते हैं।

0: इस गीत का भी नंबर आएगा, लेकिन फिलहाल जो नंबर है वो है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
3: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
2: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
3: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
0: झकास है एकदम। जी हाँ, आपने झकास साहब यानी कि अनिल कपूर साहब ने भी एक बार ट्रैफिक से बचने के लिए लोकल ट्रेन में सफर किया था। एक बार यही टाइम था गणपति विसर्जन का भी, गणपति बप्पा आने वाले हैं तो ट्रैफिक हमें पता है, हम जानते हैं कि कैसा होता है। तो उन्होंने भी ट्रैफिक से बचने के लिए एक बार लोकल ट्रेन में सफर किया था और 2 घंटे का सफर उन्होंने लगभग 20 मिनट में तय कर लिया था। अगर वो बाई रोड जाते तो उन्हें तकरीबन 2 घंटे लग सकते थे। और फिर उन्होंने अपनी जो है तस्वीरें भी साझा की थी इस बात को प्रूफ करते हुए कि भैया मैंने भी सफर किया है। वहीं पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी कार छोड़कर लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया था। बात है साल 2022 की, जब इन्हें जो है देखा गया था, स्पॉट किया गया था मुंबई की लोकल ट्रेन में। और वजह वही बिल्कुल साफ, ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है लोकल पकड़ो और समय पर पहुंचो। हालांकि उन्होंने अपना जो चेहरा है वो मास्क से ढका हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे। लेकिन भाई हमारे जो लोकल ट्रेन के जो सफर करने वाले लोग हैं ना, उनकी पार की नजर होती है, तो उन्होंने जो है एक यात्री ने इनको पहचान दिया और उन्होंने चुपके से इनका वीडियो बना लिया और फिर उस वीडियो को कर दिया वायरल और सबको पता चल गया। तो भाई मुंबई की जो लोकल ट्रेन है ना, वो आम आदमी के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए बनी हुई है और जो चाहे इसमें ट्रैवल कर सकता है। सलमान खान साहब के सोने का किस्सा हो या फिर बच्चन साहब के नेक विचारों के लिए, उनके नेक एम्बिशंस के लिए लोकल ट्रेन का सफर हो, या फिर ट्रैफिक से बचने के लिए अनिल कपूर साहब और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई एक्टर्स ने ट्रैवल किया हो। अक्षय कुमार जी का हम सुनते आए हैं, हमने वरुण धवन जी के बारे में सुना था। तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो इस तरह से लोकल ट्रेन और मेट्रो ट्रेन में अब सफर करने लगे हैं। और सच बताऊं तो ये ना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सफ़र करते हैं ना तो प्रदूषण भी कम होता है, कारपूल करते हैं तो उसमें भी जो है फ़ायदा ही होता है, पेट्रोल बचता है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक से भी, जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पर कम हो जाता है। जहां 4 की जगह 1 गाड़ी निकलेगी तो सोचिए ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा। तो ज़रा इन बातों के बारे में आप भी सोचिए। तो भैया मुंबई की लोकल ऐसी ही है। यहां अगला स्टेशन कौन सा होगा ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन अगली कहानी यहां ज़रूर मिल जाती है। अगले घंटे करेंगे सारी बातचीत महिला और बाल जगत से जुड़ी हुई, क्या होगी वो जानने के लिए बस करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ठीक 10 बजे

होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से और समाचारों के उस पार नमस्ते भारत में मेरी और आपकी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए 107.1 FM रेनबो के साथ बने रहिए।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की चार दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस प्रमाणों वाली रही। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी गई है। इसके अलावा अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों के अंदर अधिक समय सीमा तक ये चीनी अपने पास नहीं रख पाएगा। समाचारों में आगे है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले खाद्य तेल की बिक्री करने वाले व्यापारियों को मौजूदा कानून के अनुरूप कारोबार में बदलाव के लिए एक साल की अवधि देने की घोषणा की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक साल की अवधि के बाद कानून का पालन अनिवार्य होगा। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान T20 सीरीज के लिए कल 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

भाई आफतों के परिंदे तो नहीं, लेकिन घर की खुशहाली इनसे होती है। घर में जो हल्ला गुल्ला होता है ना, जो रौनक लगती है, वो भी इन्हीं से होती है। बात कर रही हूँ घर के बच्चों की, क्योंकि बच्चों से ही घर में रौनकें लगती हैं। बच्चा अगर 5 मिनट देरी से उठे तो हम याद रखते हैं, उसने होमवर्क अधूरा छोड़ दिया वो भी हम याद रहते हैं, उसके नंबर कम आए वो भी हमें याद रहता है, लेकिन कल उसने कौन सी अच्छी बात की थी, किसकी मदद की थी, किसकी किसके काम, कौन सा काम ऐसा है जो उसने पहली बार किया था, ये अक्सर हम भूल जाते हैं, है ना? ऐसा आपके साथ होता है? बताइएगा।

107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। वैसे इस गीत के उस पार बात होगी उस होमवर्क की जो मैं आपको देकर गई थी, किया कि नहीं?

0: तो भाई आपके बच्चे जो है ना वो अनाड़ी नहीं होते, वो होते हैं खिलाड़ी, लेकिन हम अक्सर उनकी जो है वो बातें जो वो गलत करते हैं उन्हीं को लेके हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। रोज सुबह सुबह छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ बहस होती है, सुबह की शुरुआत होती है, घर में अलार्म बजता है, मम्मी की आवाज़ आती है, उठो बेटा स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बच्चा उठता है, उठते ही अपना बैग ढूंढता है, जूते ढूंढता है, फिर मम्मी की मतलब चालू रहती है पीछे से डायलॉग बाजी, कल ही तो कहा था अपना सामान जगह पे रखा करो, अब देखो सुबह हो गई ना दिक्कत, अगर सॉक्स समय पर सही जगह पे रखी होती तो तुम्हें मिल जाती, शूज यहां आके पटक देते हो, बैग वहां पटक देते हो, अब तुम्हारी कॉपी भी नहीं मिल रही है। अब जरा सोचिए सुबह सुबह हम बच्चों से कितनी सारी बातें कह देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, जल्दी उठो, इस बात का ध्यान रखो, उस बात का ध्यान रखो, लेकिन इस भागदौड़ में क्या कभी आपने अपने बच्चे से कहा है बेटा आज तो जल्दी उठ गया है, तूने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी सुबह जल्दी उठाकर फ्रेश होकर स्कूल जाएगा, बड़ा मजा आता है। भाई कभी कभी बच्चों की सुबह सवेरे तारीफ भी कर दिया कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, जरा प्यार से उन्हें जगा दिया कीजिए, माथे पर एक हल्की सी किस्सी कर दिया कीजिए, उनको एक हग कर दिया कीजिए, एक जप्फी पा लिया कीजिए, क्योंकि ये जप्फी जो है ना बड़े बड़े बड़े बड़े जो तकलीफें होती है ना बच्चों की उनसे उनको बचा लेती है। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम करने लगेंगे ना तो आप खुद देखिए कि बच्चों में किस तरह के बदलाव आते हैं। जी हाँ, आज नमस्ते भारत में मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों की बातें करने वाली हूँ जो अक्सर हम लोग, हम चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे बड़े भाई हो, हम अक्सर इन चीज़ों को भूल जाते हैं और बस वही याद रखते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। आई नो वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है, दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, अगर बच्चे सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो शायद सबसे पीछे रह जाएं, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा हर बच्चे से कहती हूँ, हर किसी से कहती हूँ, हर माँ बाप से कहती हूँ, वो ये कि आपके नंबर्स ये डिसाइड नहीं करते कि आपका बच्चा कितना टैलेंटेड है या उसमें क्या हुनर है, वो हुनर उसके अंदर छुपा हुआ होता है, उस हुनर को बाहर आने दीजिए। कोई भी नंबर आपके बच्चे का हुनर बाहर नहीं लेकर आ सकता, बिकॉज वो तो सिर्फ आपको एक कहते हैं एक स्टेटस दे देगा कि भैया बच्चा इतना स्मार्ट है या इतना स्मार्ट नहीं है, या इसको ये करना है या वो करना है। याद रखिए, कोई भी नंबर आपके बच्चे का टैलेंट डिफाइन नहीं कर सकते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बातें और गीत दोनों बेशुमार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
3: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू,
2: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
3: शर्तें लागू, टोल फ्री नंबर 1800233024।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

अच्छा सवाल है, मैं क्या करूं, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? भाई कभी कभार तारीफ कर दिया कीजिए। अब चलिए मान लीजिए, एक और आपको सिचुएशन देती हूँ। आज बच्चे का रिजल्ट आया है, बच्चा आया घर पे, उसने बोला मम्मा मम्मा आज रिजल्ट आ गया। मम्मी ने पूछा कितने नंबर आए हैं, तो बच्चा थोड़ा सा डरता है 60, और आगे नहीं पीछे नहीं कुछ सोचना नहीं, अरे पिछली बार तो तुम्हारे 65 नंबर आए थे, इस बार 60 ही नंबर आए हैं, 5 नंबर कहाँ गए, दिखाओ मुझे, मैं अभी देखती हूँ। मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सारा दिन किताब खोल के बैठे रहते हो, तुम करते क्या हो? अब एक तो बेचारा बच्चा पहले ही टेंशन में है कि मुझे नंबर कम आए हैं, पता नहीं मम्मी क्या सोचेगी, पिछली बार ज्यादा आए थे, और आपने उसके उस डर को सही साबित कर दिया। आपने जो है उसको आते ही पानी नहीं कुछ नहीं, बैठ बैठ बेटा तेरा दिन कैसा रहा क्या रहा, वो ऑलरेडी उस चीज़ से अंदर अपने एक लड़ाई लड़ते हुए घर तक पहुंचा है कि पता नहीं क्या होगा, और आपने उस डर को सच साबित कर दिया उसके ऊपर चिल्लाकर। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए था? आपको बस इतना करना चाहिए था, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है यार, नंबर नहीं आए तो ना सही, आज से 10 साल बाद ना ये नंबर कोई नहीं पूछेगा कि अरे तुम्हारे बच्चे को 10th में कितने नंबर आए थे, अरे उसने 6th में कितने नंबर लिए थे। अरे वो इंसान वो देखेगा जो उस वक्त आपका बच्चा कर रहा होगा। हो सकता है उस वक्त आपका बच्चा किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको ही नहीं पूरे देश को उसके ऊपर गर्व हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ना, वो आपके बच्चे का टैलेंट नहीं डिफाइन करते हैं। आप खुद सोचिए, आज आप जो कर रहे हैं, बचपन में आपने क्या किया था, बताइए बताइए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद स्कूल में पढ़ाई में अच्छे ना रहे हों, लेकिन आज एक बहुत ही सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए कहती हूँ कि इन नंबर्स के ऊपर, इन नंबर्स के भरोसे अपने बच्चों को जो है तौलना बंद कर दीजिए। प्लीज, ये नंबर्स किसी काम के नहीं है। कुछ काम आता है तो वो बच्चों का टैलेंट होता है, हुनर होता है, वो चीज होती है जो वो सीखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई लिखाई बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए, फालतू होता, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे का आत्मविश्वास आपकी वजह से कम ना हो जाए, क्योंकि एक पेरेंट्स की जब हिम्मत लेकर बच्चा आगे बढ़ता है ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो कोशिश कीजिए, बल्कि कोशिश नहीं कीजिए, हमेशा यही कीजिए कि अपने बच्चों को वो 60 नंबर देखकर 40 मिनट की डांट मत दीजिए। जो मेहनत उसने की है वो तो देखिए, उसकी मेहनत रंग लेकर आई है। आपके भरोसे की कमी उसको भी अपने ऊपर डाउट करने पर मजबूर कर देती है। जरा ध्यान रखिएगा इस बात का।

0: तो चलिए बात करते हैं उस होमवर्क की जो मैं जब पिछली बार आपसे मिलने आई थी तो मैंने आपको दिया था। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आप जो है अपना मोबाइल फोन साइड में रख कर जरा दूसरों की बातें सुनना शुरू कीजिए। क्या आपने वो काम किया? हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने ये काम किया और मेरे होमवर्क के बारे में बोलते ही उन्होंने फटाफट से मुझे मैसेज कर दिया कि उन्होंने कहा था कि मोबाइल को दूर रखकर परिवार के साथ समय बिताना। तो भाई प्रणव शिंदे कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही अपने परिवार को महत्व देता हूँ, मोबाइल क्या चीज़ है। बहुत सारे दोस्तों से बात करने के लिए जो है मैं इस मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता हूँ, पिताजी से भी फ़ोन पर बात करता हूँ और जब घर पर रहता हूँ तब घर के साथ में परिवार के साथ में अपना समय व्यतीत करता हूँ और हम लोग जो है मिलकर सब पुराने गेम्स अंताक्षरी सुनते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, कहानियां सुनते हैं, ये सब करते हैं। और वहीं पे हमारे कुछ और भी लिसनर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं पहले, पंकज मोहर जी कहते हैं कि मैं पहले किसी की बात नहीं सुनता था लेकिन आपका कार्यक्रम सुनने के बाद अब मैं लोगों को इत्मीनान से कहने देता हूँ और मैं उनकी बातें सुनता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो अब मैं सुनता हूँ पहले और मैं फिर बोलता हूँ। चलिए ये छोटा ऐसा चेंज अगर मेरी वजह से आप लोगों की लाइफ में आ रहा है तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपने मेरी इस बात को माना। लगता है बाकी सबने ये होमवर्क नहीं किया है इसलिए उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है अभी तक। अभी तक आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट नहीं किया या पे शायद आप मेरे उस होमवर्क के बारे में भूल गए थे। बताइए हाँ, आज भी मैं आपको एक होमवर्क दे के जाने वाली हूँ लेकिन उस होमवर्क को बताने से पहले और आगे की बातें करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार मेरी और आपकी बातें बेशुमार। आकाशवाणी FM रेनबो
1: म्यूजिकलिया। आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध।
2: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश

लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम जवान पीछे से गाना गाएगा।

फिर से स्वागत है आपका 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत, जहां आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में और बच्चों के प्रति जो हमारा व्यवहार कई बार रहता है उसके बारे में। तो जब बच्चे की हर छोटी बात पर आप उन्हें डांटते हैं तो फिर उसके हर अच्छे काम पे आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। मसलन बच्चे ने पहली बार अपना बिस्तर खुद ठीक किया हो, अपनी चादर की खुद से तह लगाई हो, तो आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। बच्चे ने अपनी प्लेट खुद उठाकर किचन में जाकर सिंक में रख दी हो, आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। छोटी बहन की बॉटल में पानी भर दिया हो या बड़े भाई की बॉटल में

भर दिया हो या बड़ी बहन का कोई काम कर दिया हो, आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? आपके बिना कहे उसने अपनी किताबें और खिलौने समेट दिए, आप उनकी तारीफ क्यों नहीं करते? हम पता है क्या करते हैं, अच्छा ठीक है चलो अभी हो गया ना, अभी जाओ जाके पढ़ाई करो। अरे यार मतलब क्या है, उस छोटे से काम के बीच में उस बच्चे की एक अचीवमेंट है कि ये मैंने खुद किया है। उसे उस बात के लिए अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि आपकी एक तारीफ उसे आगे का वो रास्ता दिखाएगी जो आप चाहते हैं कि वो देखे। लेकिन उसके लिए आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हाँ काम हो गया अब ये कर लो, हाँ काम हो गया अब ये कर लो, ना ना ना ना ना ना ऐसा मत करिए भाई। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, खासतौर पे आपके बिना बोले किया है, तो एक तारीफ तो वो डिजर्व करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, वाह बेटे क्या बात है, मतलब आज तो तुमने कमाल कर दिया, तो चलो आज इसी बात पे तुम्हारी छोटी सी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। एक काम करते हैं, एक एक कप दूध का पीते हैं, मस्त बिस्किट खाते हैं और इंजॉय करते हैं ये शाम। नहीं तो चलो साथ में वॉक पर चलते हैं, आज साइकिलिंग चलोगे, चलो आज गार्डन में चलते हैं। अरे कुछ तो ऐसा छोटा बहुत कर सकते हैं कि बच्चे को लगे कि उसने कुछ किया है। स्कूल में सपोज उसने कुछ छोटा सा अच्छा किया, उसको स्टार मिल गया है या अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, या अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी मिले हैं तो भी आप उनसे कह सकते हैं, अरे वाह यार ये तो फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनका, सोचो जिनको इतने भी नहीं आते हैं, चलो आज चलो घूम कर आते हैं हम दोनों, सिर्फ हम दोनों रहेंगे, ना मोबाइल रहेगा, ना टीवी रहेगा, ना इंटरनेट रहेगा, सिर्फ मैं और तुम सिर्फ घूमने चलेंगे और बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आज ये मामा और बच्चा डे होगा या पापा और बच्चा डे होगा। छोटी छोटी बातें हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है उनको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि चाहे तुम लाइफ में जो कुछ भी करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि अगर उस बच्चे के पास ये कॉन्फिडेंस है ना कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हमेशा हैं, तो यकीन रखिए वो ज़िंदगी में आपसे कभी कोई किसी भी तरह की बात जो है वो छुपाएगा नहीं, यकीन मानिए इस बात का।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है, आपको उनका कंपैरिजन नहीं करना है। वो शर्मा जी के बेटे वाला हिसाब किताब नहीं करना है भैया। हो गए शर्मा जी के बेटे, पास हो गए, सब कुछ बन गए। अब अपने बेटे को देखिए, अपनी बेटी को देखिए, वो क्या करना चाहती है। शर्मा जी के बेटे ने तो जो करना था सो कर लिया, उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ना, तो फिर क्यों कहना बच्चों को ये सब। और तुम्हारी दोस्त देखो कितनी साफ़ सुथरी रहती है, तुम्हारा कमरा देखो कितना गंदा रहता है। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे का पेस, हर बच्चा अपने तरीके से होता है। उसे किसी के साथ कंपैरिजन करा के उसे छोटा महसूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप उसके आत्मविश्वास को, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हैं। इसकी जगह आप कह सकते हैं, देखो तुमने पिछली बार से तो ये काम बड़ा अच्छा किया है। दैट्स द वे, तुमने हार नहीं मानी। यू नो पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अरे जीते नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपना बेस्ट दो, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कम से कम आपको खुद से ये शिकायत नहीं रहेगी, अरे यार मेरे को थोड़ा और करना चाहिए था। तो ये सब चीजें ना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको ना अपने बच्चों को किसी से बेहतर नहीं बनाना है, आपको अपने बच्चे को उस लायक बनाना है कि वो आगे चलकर ज़िंदगी में ये कहे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। उसको आपका बस इतना सा साथ चाहिए और कुछ नहीं। नसीला, नसीला तेरा नैना।

0: तो चलिए आप सब तैयार हैं आज के होमवर्क के लिए। तो अब आज आपको क्या करना है, मेरी अगली मुलाकात में मैं आपसे इस बारे में पूछने वाली हूं। तो एक छोटा सा होमवर्क आपको देखे जा रही हूं, आपको क्या करना है कि बिना किसी रीजन के अपने बच्चों की तारीफ करनी है। उन्हें नंबरों के लिए डांटिए मत, उन्हें किसी काम को ना करने के लिए हजार बातें मत सुनाइए। उनसे कहिए कि अरे वाह यार, आज तो तूने बड़ा अच्छा काम कर दिया, मुझे ना तुझ पर बहुत गर्व, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे तूने अपना चम्मच उठा के किचन में रखा है। यू नो, ये छोटी छोटी बातें भी ना बहुत बच्चों को इफेक्ट कर जाती हैं। अगर आप उनसे बस ये थोड़ा सा अपने नेचर में आप चेंज करके देखिए, आप उनसे ये कह सकते हैं, ये जो तुम कोशिश कर रहे हो ना, आई रियली लाइक इट, इसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बट आई रियली लाइक इट, जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। बच्चा अगर थोड़ा सा आपको, आई एम श्योर वो ऐसा फील करेगा, खैर ये क्या हो गया मम्मी को, ये अचानक से मतलब सुबह से शाम कैसे हो गई है, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। अगर वो पूछ भी लेता तो यार नहीं, बस आई वॉज जस्ट अप्रिशिएटिंग कि तुम कर क्या रहे हो। तो एक छोटा सा होमवर्क कीजिएगा, बिना रीजन के बच्चों की तारीफ कीजिएगा, बिना किसी रीजन के डांटिएगा मत। अगर आप बिना किसी रीजन के उन्हें डांट सकते हैं तो उन्हें प्यार भी कर सकते हैं, और आपको अपने बच्चों को प्यार करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, उनकी तारीफ करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये होमवर्क आपको करना है मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए। आपको अपने ऊपर काम करना है, बच्चों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर काम करिए, फिर देखिए बच्चों का काम कैसे अच्छे से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए। थोड़े बहुत से हम एड्स आपको सुनवा रहे हैं, उन्हें सुनते रहिए, गीतों का भी मजा लेते रहिए। और 107.1 FM रेनबो के साथ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मैं ममता सहगल चाहूंगी आपसे इजाजत मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए। टेक केयर, बाय बाय।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: और इसी के साथ आपको ये बता दूं कि ठीक 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में हमारे मुंबई केंद्र से, और 11:02 पर लक्ष्मी होंगी आपके साथ लेकर कार्यक्रम ब्रेक फ्री। तो अपनी हर तकलीफ से फ्री होने के लिए, उन्हें ब्रेक करने के लिए हो जाइएगा तैयार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM Rainbow चैनल. प्रस्तुत है इस वक्त के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे. सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएगी. मुंबई में आगामी गणेश उत्सव के दौरान 6 फीट से कम ऊंचाई वाली भगवान गणेश की प्रतिमाओं का कृत्रिम तालाबों में विसर्जन अनिवार्य होगा. बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि यह व्यवस्था उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लागू की गई है. अंत में खेल जगत से, भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे. शेष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे. इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए.

सुनाइए गाना और आप सुन रहे 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो बुधवार की सुबह हफ्ते के बीच वाला दिन. काम भी चल रहा है, भाग दौड़ भी चल रही है, लेकिन दिल है कि कभी कभी बस अपनी ही दुनिया में खो जाना चाहता है. और सुबह से जो भी सीरियस मोड चल रहा था उसे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, क्योंकि 11 बज चुके हैं और अब वक्त है नो प्रिटेंडिंग, नो प्रेशर, नो फिल्टर. ये है ब्रेक फ्री, जहां एक घंटे के लिए आप बस आप रह सकते हैं. आप हैं मेरे साथ यानी कि लक्ष्मी के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. ब्रेक फ्री में म्यूजिक सुनेंगे. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक.

वेल, क्रिमिनल फिल्म से सुना आपने ये गाना और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि हम पूरे दिन कितने लोगों से बात करते हैं, लेकिन कितनी बार सच में वो बोलते हैं जो महसूस कर रहे होते हैं? कोई पूछे कैसे हो तो जवाब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होता है, हाँ ठीक हूँ। चाहे सुबह अच्छी गई हो या खराब, चाहे काम का प्रेशर हो या मन किसी और बात में उलझा हो, शायद हम सब ने थोड़ा सा फिल्टर लगाना सीख ही लिया है। लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है ना, बिना किसी बड़ी वजह के बस ये मान लेना कि आज मूड परफेक्ट नहीं है, आज थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, या फिर आप बस किसी से बात करने का मन है। और शायद यही छोटी छोटी ऑनेस्ट बातें हमें एक दूसरे से थोड़ा और करीब लाती है। तो आज का सिंपल सवाल ये है, अगर कोई आपको बिना जज किए अभी पूछे, सच सच बताओ कैसे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए, खुद को ही बताइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री मेरे यानी कि लक्ष्मी के साथ, FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल तक।

0: Podcast Chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम. रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध.
2: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू. महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट. शर्तें लागू.
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध.
4: दोस्तों, ब्रेक फ्री आप मेरे साथ सुन रहे हैं और बातें कर रही हूँ एकदम सिंपल सी. कभी कभी यू नो, सबसे अच्छी बातें प्लानिंग करके नहीं होती है. जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाना, बिना किसी वजह के रास्ते में अपनी फेवरेट चाय मिल जाना, या कोई गाना सुनकर अचानक एक ऐसी याद वापस आ जाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था. हम अक्सर खुश होने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतजार करते रहते हैं. वीकेंड आएगा तो रिलैक्स करेंगे, छुट्टी मिलेगी तो मिलेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो अपने लिए कुछ करेंगे. लेकिन शायद जिंदगी का सबसे अच्छा पल या अच्छा हिस्सा उन छोटे मोमेंट्स में ही छुपा होता है जिनके लिए हमने कोई प्लान नहीं बनाया था. तो आज अगर आपके दिन में कोई छोटी सी या अच्छा सा ऐसा मोमेंट आए, उसे जल्दी से आगे मत बढ़ा दीजिएगा. थोड़ी देर रुकिएगा, महसूस करिएगा. ब्रेक फ्री सुनते रहिए FM Rainbow 107.1 MHz. दिल से दिल तक.

दोस्तों ब्रेक फ्री आप मेरे साथ सुन रहे हैं, 11:45 हो चुके हैं और मैंने आपसे बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट सवाल पूछे थे, पर एक आखिरी सवाल पूछूं। और आपने आखिरी बार कब कोई चीज की थी जिसका कोई मतलब नहीं था लेकिन फिर भी करके बहुत अच्छा लगा था? जैसे बिना वजह लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना, किसी दुकान पर रुककर वो चीज खरीद लेना जो बचपन से पसंद है, किसी पुराने दोस्त को अचानक से कॉल कर देना, या बस घर की बालकनी में बैठकर चाय खत्म होने तक कहीं ना जाना। क्या होता है ना, हम बड़े होते होते हर चीज का रीजन ढूंढने लगते हैं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, इससे क्या मिलेगा, टाइम है क्या, इतने पैसे खर्च करने चाहिए क्या। लेकिन हर अच्छी चीज का कोई फायदा होना जरूरी तो नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मन करता है। तो आज नो फिल्टर वीक डे पर एक छोटा सा रिमाइंडर। वेल, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक 12 बजे आप सुनेंगे समाचार और 12:02 पर म्यूजिक कैफे में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस पड़ाव की आखिरी दुकानें सुनवाने जा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान उत्तर यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस डोमोब्रोकोविक्स से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मुंबई उच्च न्यायालय ने सेलिब्रिटी प्रबंधक रही दिशा सालियान की मौत के मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से जांच कराने का आदेश दिया। मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार हुआ है और चिकित्सकों के सलाह के अनुसार वे अब नियमित रूप से भोजन कर रहे हैं। उनके एक करीबी सहयोगी ने आज यह जानकारी दी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन मजबूत रहा। अंत में नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। भारतीय विशेषज्ञ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से एकत्र किए गए DNA नमूनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने और पीड़ितों और लापता व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने में मदद के लिए वहां के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समाचार समाप्त हुए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10% सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिच योर लाइफ
3: रेनबो पर आप है लक्ष्मी के साथ म्यूजिक कैफे सुनेंगे दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती है जहां हम सिर्फ कॉफी पीने नहीं जाते हम वहां थोड़ा सा अपने साथ बैठने जाते हैं एक अपना पसंदीदा कोना होता है सामने एक गर्म कप होता है और आसपास धीमी धीमी सी आवाज़ें आती हैं और फिर कोई गाना बजता है जो अचानक आपको किसी पुराने दिन में ले जाता है आज हम यहाँ पर ऐसी ही एक जगह बना रहे हैं जहाँ कोई जल्दी नहीं है कोई बहुत बड़ी बात कहने की ज़रूरत नहीं है बस अच्छी बातें अच्छी यादें और वो गाने जिन्हें सुनकर लगता है कि हाँ ये तो मेरा वाला गाना है और मेरे लिए ही बज रहा है तो इस घंटे के लिए आप अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ से थोड़ा बाहर निकालिए आपकी सीट तैयार है संगीत तैयार है यह है म्यूज़िक कैफ़े 107.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल तक

दोस्तों म्यूजिक कैफे आप मेरे साथ सुन रहे हैं और मैंने कहा ना कि कैफे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम बात करना चाहते हैं और आज इस पड़ाव में मैं आपको इतनी प्यारी ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका एंडिंग यानी कि अंत मैं बताने वाली हूँ हिट एंड हॉट में, ताकि आप मेरे साथ अगले दो घंटे बने रहे। चलिए शुरुआत करती हूँ कि किसी कैफे में आपको सबसे अच्छी टेबल कौन सी लगती है, वो जो खिड़की के पास हो, जहाँ से बाहर की दुनिया दिखाई देती रहे लेकिन उसकी आवाज़ अंदर तक ना आए। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का हर शनिवार उसी कैफे में जाकर बैठता था, हमेशा वही टेबल, वही कॉफ़ी और लगभग वही वक्त। वहाँ काम करने वाली लड़की उसे पहचानने लगी थी। एक दिन आखिर उसने हंसकर पूछ ही लिया, आप यहाँ काम करने आते हैं या बस कॉफ़ी पीने का बहाना है? लड़का भी मुस्कुराया और बोला, शायद दोनों नहीं, मैं यहाँ किसी का इंतज़ार करने आता हूँ। लड़की ने पूछा, किसका? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कॉफ़ी उठाई, खिड़की से बाहर देखा और कहा, एक दिन ज़रूर बताऊँगा। अब सवाल ये था कि वो किसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों ये जानने के लिए तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा हिट एंड हॉट का। ठीक 12:30 पर आप मराठी कार्यक्रम सुनेंगे और 1 बजे आप सुनेंगे दोपहर चाप बात में, और 1:05 पर मैं आपसे फिर से मिलूंगी इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें, आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया,

0: मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
1: जी।
0: आप कहेंगे ये ठीक भी है क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
1: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
0: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
1: जी।
0: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
1: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
0: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
1: जी।
0: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था
1: जी।
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
1: जी।
0: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है
0: जी। श्रोताओं, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
1: जी,
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओं, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है
1: जी। आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी
1: जी। तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
2: नमस्कार साथियों।
4: मेरा भी नमस्कार।
2: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
2: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
2: तो चलिए हम बता देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
2: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
2: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
5: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
2: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल

0: उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
1: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए

0: कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई, भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

हिट एंड हॉट आप मेरे साथ सुन रहे हैं और उस कहानी को आगे बढ़ाती हूँ, कॉफी शॉप वाली कहानी कि वो लड़का हर शनिवार को इंतजार उस कॉफी टेबल पर क्यों कर रहा है। तो वैसे ही हर शनिवार की तरह वो लड़का फिर उसी टेबल पर आया। तो आज पहली बार उसने कॉफी ऑर्डर करने से पहले इधर उधर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वही लड़की काउंटर पर थी जो उसको पहचानती थी और उसने दूर से ही पूछा, आज भी इंतजार? लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, आज शायद आखिरी बार। लड़की थोड़ी देर चुप रही, आने वाली है वो, उसने कहा, पता नहीं। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना सा कागज निकाला और टेबल पर रख दिया। लड़की की नजर उस पर पड़ी। कागज पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी और नीचे एक गाने का नाम। लड़की ने पूछा, ये क्या है? वो बोला, हमने तय किया था अगर कभी दोबारा मिले तो इसी गाने के बजने पर एक दूसरे को पहचान लेंगे। लड़की ने कागज को देखा और फिर कैफे में बज रहे संगीत पर ध्यान दिया और तभी उसे पता चला कि आज तो ये गाना प्लेलिस्ट में है ही नहीं। तो फिर सवाल ये था कि वो आज यहाँ ये कागज लेकर क्यों आया है। कहानी अभी बाकी है, सुनवा रही हूँ आपकी फेवरेट गाने हिट एंड हॉट में। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो।

तुम अभी भी यहाँ आते हो? लड़के ने कहा, तुमने कहा था वापस आओगी। वो कुछ पल चुप रही। मैं वापस आना चाहती थी, शहर बदला, नौकरी बदली, बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। उसने अपने मोबाइल से वो प्लेलिस्ट दिखाई, उसमें वो एक ही गाना था जो आज तक उसने डिलीट नहीं किया था, और वही गाना अचानक कैफे में बजा, क्योंकि उस काम करने वाली लड़की, कैफे में काम करने वाली लड़की ने वो प्लेलिस्ट में से वो गाना इस बार क्यू कर दिया था और वो गाना बजा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोई ड्रामेटिक, कोई डायलॉग नहीं, कोई वादा नहीं, बस वो 5 साल का इंतज़ार, एक गाना और सामने बैठा हुआ इंसान, जिसे दोनों ने कहीं ना कहीं अपने अंदर संभाल कर रखा था। दोस्तों, हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ कहानियों को बस एक और मौका चाहिए होता है, और शायद आज उन्हें वो मौका मिल गया था। वेल, हिट एंड हॉट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक 2 बजे मराठी भाषा के कार्यक्रम जारी रहेंगे, और इस पल के आखिरी 2 गाने सुनवाने जा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार।

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्सकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट X@AIR News Hindi और पब्लिक पर @AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
4: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाशय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले तीन दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
5: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले तीन दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले तीन दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हिरोइन अभी तू
1: सत्याना
2: रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना कौन हीरोइन तुझला कर लगा अग्गा
3: अब असं काय करता अजून एक चांस द्या ना

0: अरे बाप रे।
1: लटपट लटपट लटपट लटपट तेरी चाल है मोटी नखरेली, बात तू करती

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूं। मैं निरुपमा श्रीवास्तव और जिंदगी के फलसफे को बुनता, जिंदगी की कहानियों को आप तक पहुंचाता प्यारा सा कार्यक्रम लव यू जिंदगी लेकर हाजिर हूं। वैसे जिंदगी की मैं तो जितनी बातें करें कम ही है, और बातें करना जिंदगी में अच्छा ही लगता है।

और जिंदगी के फलसफे ही इतने हैं कि जिंदगी ही कम पड़ जाती है बातें करते करते। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत करी हुई इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो यही कहती है कि जिंदगी को बस प्यार से गले ही लगाना बेहतर है।

ऐ जिंदगी गले लगा ले। कई बार ऐसा लगता है ना कि जिंदगी, ऐसा लगता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जितना समेटने की कोशिश करते हैं ये उतना ही हमसे दूर चली जाती है। हम इसके गम को, खुशी को, हर किसी को, हर बात को, जो भी हमारे सामने इसके गिले शिकवे, इसकी जलन, इसमें जो भी आता है, हम वैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता इसे गले लगाने के अलावा। लेकिन कहते हैं ना, एक खुशी से गले लगाते हैं, एक दुख से। और यहाँ पर गालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी बहुत कम निकले। वैसे ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। और कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो हम फिर जस के तस खड़े रहते हैं कि भाई सामान 100 बरस का हम इकट्ठा करते हैं और अगले पल की खबर ही नहीं। जी हाँ, नेपाल की त्रासदी जीवन में कई बार हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बहरहाल फिलहाल तो इन सवालों को थोड़ा परे रखकर आपको सुनाती हूँ एक और खूबसूरत सा गीत, जिंदगी के फलसफे को ही बयां करता, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम मशाल।

0: journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: बिल्कुल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो प्रसारण सेवा म्यूजिकली योर्स और लव यू जिंदगी में आज आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव जी हां जिंदगी से पर हमें यही कहते रहना चाहिए लव यू जिंदगी और वो जो एक भाव आता है ना जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते कई बार कि भाई जिंदगी जो हमारे सामने प्रस्तुत करी हमें उसे स्वीकार करना है लेकिन हमारे हाथ में होता है वो रिएक्शन कि हम किस तरीके से उस चीज़ को स्वीकार करते हैं जो जिंदगी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। हम बात कर रहे थे नेपाल की त्रासदी की तो नेपाल की जो त्रासदी थी वो बहुत ही भयावह है वाकई में हमारी रूह कांप जाए आत्मा कांप जाए कि भाई क्या किया जाए ऐसा कुछ हो तो बस हम उस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन इस त्रासदी में एक जो उम्मीद की किरण दिखी वो उस ग्रीन हाउस की चर्चा हर जगह है जी हाँ और पूरे बिल्कुल बाढ़ में बिल्कुल उस त्रासदी के बीच में वो थी और इतने खतरनाक तरीके से लेकिन फिर भी वो जो घर था वो ग्रीन हाउस जो घर जैसे कहा जा रहा है वो टिका रहा और जो वहाँ के लोग थे वह रहने वाले थे परिवार के लोग थे वो सब के सब सुरक्षित जो है उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया और उनका ये कहना कि हम ईश्वर का स्मरण ही कर रहे थे पूरे समय पर और इसकी दोनों बातें हो सकती हैं कि वैज्ञानिक तरीके से भी ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल स्वीकार्य है कि उन्होंने जो है घर जब बनाया उसकी जो नींव रखी वो उतनी ही मजबूत रखी पूरे नियमों का पालन किया कि भाई जितनी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी ही स्ट्रांग उसकी फाउंडेशन रही और दूसरी बात ये कि

मन ये भी कहता है कि हाँ ईश्वर की कृपा तो ज़रूर ही रही। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम बस भ्रमित हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, अरे कहाँ होता है, कुछ नहीं होता, हमें सब नियमों का पता होता है लेकिन हम अनदेखी कर देते हैं, अरे हाँ सब तो कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, अगर आप नियम पूर्वक काम करेंगे तो ये नियम आप ही को संरक्षण प्रदान करेंगे। बहुत कुछ सिखा जाती है ये बात। हम भी अपने दैनिक जीवन में कई बार नियमों की अनदेखी कर देते हैं, कहते हैं अरे सब चलता है, लेकिन ये सब चलता है कभी कभी बड़ा भारी पड़ सकता है हमें। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख हमें यही रहना लेनी चाहिए कि नियमों का पालन हमेशा करते रहें। अगर आप नियमबद्ध तरीके से चलेंगे तो ये तो नहीं है कि आप हमेशा ही सुरक्षित, लेकिन काफ़ी हद तक आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप नियमानुसार हर काम करते हैं। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को अगर हमें जीतना है तो हमें नियम अनुसार अनुशासन के साथ हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम इस जीवन को गले लगा पाएंगे और उसकी उस जंग को जीत पाएंगे।

बिल्कुल, कई बार जीवन ऐसा ही लगता है कि एक नई जंग है। एक एक कार्यक्रम से हमें निरम छुट्टी मिलती नहीं है, यानी कि मतलब यही है कि एक हम स्ट्रगल से निकलते नहीं है, एक संघर्ष से निकलते नहीं है, उसका कोई हम सॉल्यूशन निकालते नहीं, और दूसरी जो है प्रॉब्लम्स परेशानी वो बिल्कुल खड़ी रहती है कि भाई अब क्या करना है बताओ। और कई बार अगर हम इसे ऐसे देखें ना तो ये बड़ा मज़ेदार किस्सा हो सकता है, और हमें हर किसी को यही लगता होगा कि मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को डिस्कस करते होंगे अपनों से तो आप पाएंगे कि ये आपके साथ ही नहीं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना वो सामूहिक रूप से सभी के साथ वैसा ही होता है, और अधिकतर सबको यही लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सबसे बड़ा एक कहते हैं ना विडंबना है, पैराडॉक्स है, और हम जो जीवन जी रहे हैं ना कई बार वो परिस्थितियाँ सबके साथ एक जैसी ही आती हैं, लेकिन यही है कि हर कोई उसे किस तरीके से लेता है। जैसे कि हमने कहा हमारा रिएक्शन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, कि हम कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसे हल्के तौर पर लेते हैं कि भाई ठीक है जो है वो है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ो, आगे का देखो क्या करना है। और बहुत से लोग होते हैं कि जो परेशानी होती है उन्हें ऐसे पकड़ कर बैठ जाते हैं कि वो परेशानी कब की निकल गई होती है, बहुत लंबा समय हो गया उन्हें निकले हुए, लेकिन हम उन्हें याद कर करके और परेशान होते रहते हैं, हम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते, और इससे ही होता है ना कि हम उन परेशानियों को और उनका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यही तो कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सबसे हैरानी की बात यही हो जाती है।

0: journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो प्रसारण सेवा. आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव. लव यू जिंदगी में बातें कर रहे हैं जिंदगी के बारे में. भाई जैसे कहा हमने जिंदगी का फलसफा तो कुछ ऐसा है कि बातें कम ही नहीं होती हैं, लेकिन एक बात है, हम सुख के बनिस्बत दुख को अधिक पकड़ते हैं, आंसू पकड़ के रखें. आप इन गीतों को भी देखिए तो इन गीतों में भी पता नहीं हमारा मानवीय भावनाएं हमारी ऐसी होती हैं कि हम सुख से ज़्यादा दुख के प्रति आकर्षित होते हैं. और ऐसा साइंटिफिकली कई बार कहा गया है कि हम जिसके प्रति आकर्षित होते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है. इसलिए आप एक

हम जरूर कीजिएगा, हम थोड़े स्मार्ट बनते हैं, हम दुख के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, तकलीफ के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, हम उसमें कुछ सुख कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बीते दिनों एक ऐसी ही खबर पढ़ने मिली मुझे, जी हाँ, सोशल मीडिया जो है बहुत सारी खबरें लेकर आता है, हर घर की एक खबर, हर व्यक्ति की एक कहानी होती है। चलिए मैं किसी अलग कहानी में ना निकल पड़ूँ, इसलिए आती हूँ उस खबर की तरफ। अच्छी खबर थी, मन को कहीं थोड़ा सा दुखी कर गई, लेकिन अंत में कुछ अच्छा भी महसूस करा गई। खबर कुछ ऐसी थी कि एक बहन जो थी वो रही नहीं, उसका देहांत हो गया, लेकिन उसने अपने हाथ जो थे वो दान कर दिए थे, और वो किसी दूसरी लड़की को ही वो हाथ मिले। और बीते दिनों जब रक्षाबंधन था, तो वो जो लड़की थी जिसे वो हाथ मिले थे, वो उन्हीं हाथों से उस दिवंगत लड़की के भाई के पास गई और उसने उन्हें उन्हीं हाथों से राखी बांधी। अब एक अलग ही बात है इस बात में, कहते हैं ना कि अंग दान श्रेष्ठतम दान होता है, और कैसी बात है कि आप नहीं होते हैं संसार में, लेकिन फिर भी आपकी मौजूदगी होती है। श्रोताओं, नेत्रदान भी ऐसा ही एक दान है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है 25 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक, लेकिन इसके लिए किसी पखवाड़े की आवश्यकता नहीं है, बस एक एहसास की ज़रूरत है कि हम अपने नेत्रों का दान करते हैं तो इससे हमारे नेत्र सदा के लिए जीवित रह सकते हैं, और न सिर्फ ये जीवित रहेंगे साथ ही साथ ये अपनों को भी देख सकेंगे, और तो और जिसकी आँखों से ये देखेंगे वो आँखें भी दुनिया को देख सकेंगी, रोशन हो सकेंगे। और ये एहसास अपने आप में कितना मीठा है, कितना प्यारा है। इसलिए अंगदान से जुड़े या नेत्रदान से जुड़ी जो भी भ्रांतियाँ हैं, इन भ्रांतियों में ना पड़ें और इस श्रेष्ठतम दान को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और इसके प्रति एक बहुत ही सकारात्मक पहल अवश्य करें, कम से कम विचार तो ज़रूर ही करें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: वैसे श्रोता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है और फोन हमारे साथ बिल्कुल बना रहता है और फोन घूम जाए तो कितनी घबराहट होती है ना. बहरहाल और कुछ घूमे तो इतनी नहीं होती जितनी फोन के घूमने पर होती है. वैसे मेरा फोन आज घूमा नहीं है, वो बात नहीं बता रही थी आपको. आपके साथ तो आज ये बात शेयर कर रही थी कि बीते दिन सोशल मीडिया के जरिए एक खबर पढ़ने में आई और मतलब अजीब सा लगा, उस अजीब सी कैफियत लगी उस खबर को पढ़ने के बाद. वो खबर कुछ ऐसी थी कि आंध्र प्रदेश की एक बुज़ुर्ग महिला थी, वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी और जो है उनका जब देहांत हो गया तो अकेली रहती थी, बिल्कुल फटे हाल जैसे अमूमन हम सोचते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति. लेकिन जब उनकी अंतक्रिया की गई, फिर उनका घर को सफाई कर रहे थे तो पता है क्या हुआ, उनके घर से लगभग 8 लाख रुपए बरामद किए गए और जो कहा जा रहा था कि काउंटिंग बिल्कुल और जारी थी. आप सोचिए, जीवन भर वो पैसा इकट्ठा करती रहीं और वो पैसा उनके काम ना आया, मतलब उन्होंने उस पैसे को अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया और वो ऐसे ही इस जीवन से चली गई. बहुत बड़ी विडंबना लगी इस बात की. और कई बार ऐसा हम और आप भी करते हैं, हम चीज़ों को रख देते हैं, अभी बाद में करेंगे. कोई कुछ करने का मन कर रहा है, हम कहते हैं अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी इसे रख देते हैं, बाद में करेंगे. और बाद में करने की आदत कई बार होती है. कई बार किसी से कुछ कहने का मन कर रहा है, किसी के साथ समय बिताने का मन कर रहा है, लेकिन अरे अभी तो टाइम नहीं है, बाद में बिताएंगे. लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस बात पर विराम लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बाद में जो शब्द हैं इसे हटा दें. आज हम क्या कर सकते हैं और आज ही करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर नहीं, वो चीज़ अगर आज ही कर ली तो क्या हो जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, आज मन में आया है तो आज ही उसका वो शुभ मुहूर्त है. ऐसा जानकर उस बात को, उस मन की बात को, उस अच्छी बात को कर लीजिए. हाँ, अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है ना तो उसे ज़रूर टाल दीजिएगा कि मैं बाद में गुस्सा करूँगा. लेकिन हम उल्टा करते हैं, हमें किसी पर गुस्सा आता है, कोई रोष होता है ना, तो वो हम बिल्कुल

नहीं टालते, वो हम उसी समय निकालेंगे, हम नहीं देखते कि भाई ये समय सही नहीं है और अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, हम बाद में देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वही निकलना है, भले कितने ही आप लेट हो जाएं। अगर किसी से लड़ाई करने का मूड बन ही गया है तो बस वो लड़ाई तो करनी ही है, भले आप अपने ऑफिस के लेट हो रहे हैं, आपको और कुछ असुविधा हो रही है, पर वो फिर सारी चीज़ें अनदेखी हो जाती है। लेकिन कोई भी अच्छी बात होती है हम सोच विचार के जब करते हैं तो हम कहते हैं बाद में करेंगे, तो कम से कम ये हम ना करें और जो करना है आज ही करें, जो सुख है उसका उपभोग भी आज ही करें, क्योंकि जीवन जो है वो खुश रहने के लिए है। और बस ऐसे ही खुश मिजाजी में अगर कोई बेहतर हम सफ़र मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या, चार चांद लग जाते हैं, है कि नहीं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं FM Rainbow, musically yours. आपके साथ हूँ आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव और आपसे बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ मैं. मुख्यतः आपसे ये कह रही थी कि हमें अधिकतर जो गीत भी हमने देखे ना, हमने यही देखा कि हम आंसुओं को ज़्यादा पकड़ते हैं. तो आंसुओं को ना पकड़ें, आप खुशियों को पकड़ें. अपने खुशनुमा पलों को हम याद रखें ना, तो ये ज़्यादा स्मार्ट तरीका होगा जीवन जीने का. बहरहाल, एक स्मार्टनेस और कल मैंने देखी. मैंने कहा, सोचा था आपसे मिलूंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ उस स्मार्टनेस को साझा करूंगी. भाई, अपनी तारीफ सुनना और करना किसे अच्छा नहीं लगता. तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे एक अपने किसी अपने को एक तकलीफ़ हुई, शारीरिक तकलीफ हुई. कहीं ना कहीं ना चलते फिरते कहीं ना कहीं कुछ लचक भरी जाती है. और हमें लगा कि सर्वाइकल की दिक्कत तो नहीं हो, तो हमने उसे सर्च किया और सोशल मीडिया पर सर्च किया, गूगल पर नहीं किया, सोशल मीडिया पर सर्च किया. और जनाब, इतने सारे वीडियोस हमें उस पर मिल गए, इतनी सारी जानकारियाँ, खान पान से लेकर हर किसी ने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, इतने सारे वीडियोस मिल गए. तो हमें लगा, अरे यार, ये तो बढ़िया है. तो एक तरह से देखा जाए तो हमें बचपन में हमेशा एक ऐसे हुआ करता था कि भाई, साइंस के प्रो एंड कॉन्स आपको लिखना है. तो हम हमेशा यही लिखते थे कि भाई, ये आपके हाथ की बात है कि आप किस तरह से चीज़ों का

श्रोताओं, इसी गीत के साथ लव यू जिंदगी कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में ठीक 6:05 पर आप सुन सकेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 6:15 पर अंदाजे बयां लेकर फिर एक बार उपस्थित हो जाऊंगे।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ. मैं निरुपमा श्रीवास्तव 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर. और ये वक्त होता है कार्यक्रम अंदाज़े बयां का. बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सी गज़लें आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिलहाल एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, और उसके उस पार आपके लिए मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में एक बेहतरीन गज़ल है.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कितनी मासूम होती हैं दिल की ये बातें, और उतनी ही मासूम होती हैं, उतनी ही मासूम लगती हैं जब ये उसी अंदाज में दिल तक पहुंचती हैं। शायर न जाने किस ख्वाबगाह से कैसे कैसे शब्द निकाल कर लाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जी हाँ, ये दिल की बात कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं।

तुझसे जो मांगा जिंदगी, तुझसे जो भी मांगा ऐ जिंदगी, वो तो हमें मिला नहीं। तू भी क्या याद करेगी, अब तुझसे कोई गिला नहीं।

0: कोई जल्दी में।
1: बिल्कुल एक मुसाफिर के जैसी है ये सारी दुनिया, कोई जल्दी तो कोई देर से जाने वाला। श्रोताओं इसी के साथ ही आज का अंदाजे बयां कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार और 7:10 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम लेकर उपस्थित हो जाएंगे फिर एक बार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा में आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूं। मैं निरुपमा श्रीवास्तव। 7:11 का वक्त हो चुका है और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम लेकर उपस्थित हूं। मैं निरुपमा श्रीवास्तव और बिल्कुल आप सभी के रिक्वेस्ट हम तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमने नोट भी कर ली हैं और वो श्रोता जो रह गए हैं जो अपने रिक्वेस्ट हम तक नहीं पहुँचा पाए तो उन्हें हम अपना नंबर बता दें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी गीतों की रिक्वेस्ट और वही रिक्वेस्ट फिर हम आपको गीतों के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। तो हमारे नंबर्स हैं 8657661071 और 6567661071। फिर एक बार 8657661071। तो बिल्कुल आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अशोक पाटिल और राजेश मोरे जी बरेली से। इन्होंने एक फरमाइश भेजी है, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है। फकीरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़, आइए सुनते हैं।

0: journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: बिल्कुल, हम भी हमारे श्रोताओं के बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपकी बदौलत आप इतने बढ़िया बढ़िया गीतों की फरमाइश करते हैं और आपकी वजह से हमें भी वो इतने प्यारे प्यारे गीत सुनने मिल जाते हैं. और ये जो गीत हमने आपको सुनाया फिल्म कुदरत का, किशोर कुमार की आवाज़, पंकज मोहर साहब की पसंद का ये गीत था. अब अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म चित्तूर से, अजय साखरे जी इंदौर से इनकी फरमाइश आई है, येसुदास की आवाज़. और श्रोताओं, अगर आप भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071. जी हाँ, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. गीत जो शब्द हैं गीत के वो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, और ये दोनों चीज़ें मुख्यतः लिखेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक आपकी फरमाइश पहुँचाने की. और फिलहाल चित्तूर फिल्म का ये गीत है.

0: यशोदास जी की आवाज़ में ये गीत हमने सुना फिल्म चितचोर से। चितचोर के वैसे सभी गाने बेहद कर्णप्रिय रहे, रविंद्र जैन साहब का संगीत। और अब श्रोता अगली फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं वो है कल्पना जी की, शराबी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया सा गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है। और इस गीत को सुनाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। और श्रोताओं फिर एक बार आपको बता दें कि आप भी अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। और अगर अब तक आपकी फरमाइश पूरी नहीं हुई है तो बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी की फरमाइशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

बिल्कुल, ये गीत हमने सुना किशोर कुमार की आवाज में, शराबी फिल्म का गीत, कल्पना जी की थी पसंद। और अब बैक टू बैक दो गीत हम आपको सुना रहे हैं, एक राकेश माथुर जी की फरमाइश है पुणे से और एक है प्रणव शिंदे की फरमाइश। साधना जी पर फरमाए गीत वो सुनना चाहते हैं और आज साधना जी को याद कर रहे हैं हम, तो ये दोनों ही गीत आज हम आपको बैक टू बैक अब सुना रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

बिल्कुल अगला गीत हम आपको सुनाने, फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर जी की आवाज़, फिरोज सिघानपुरिया, प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे जी आपके लिए हम सुना रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।

गाइड फिल्म का एक गीत हमने आपको सुनाया और ये पसंद थी धनश्री जोशी जी के। उम्मीद करती हूँ और भी श्रोताओं को ये जो है ये गीत एवर ग्रीन सॉन्ग्स हैं। और आज श्रोताओं हम तुम में कुछ ऐसा ही मूड बन गया और हमारे श्रोताओं ने भी कुछ ऐसे ही धीरे धीरे हम पहले पहले जाते गए और पुराने गीतों का सिलसिला जब वो गोल्डन एरा था ना हमारे हिंदी फिल्म म्यूजिक का वो आज हम जी रहे हैं हम तुम में। और अगली फरमाइश भी कुछ ऐसी है, संजय पाटिल साहब की फरमाइश है और वो सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आज और कल का ये गीत। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं ये गीत और फिर एक बार बता दूं आपकी फरमाइश आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

बिल्कुल, जब ऐसे गीत हों तो ऐसा लगता है ये वादियाँ, ये फिजाएं हमें बुला रही हैं। वैसे श्रोताओं, अब एक ही गीत की गुंजाइश है और बहुत सारी फरमाइशें रह गई हैं, क्या करें, माफ़ी चाहेंगे बिल्कुल, लेकिन ये जो कार्यक्रम है हम तुम, आप इसे नियमित रूप से सुन सकते हैं और अपनी फरमाइशें आप इसमें पहुँचा सकते हैं। और अब आखिरी फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो विजेंद्र घाटोल जी की है, बहुत ही सुंदर उन्होंने गीत चुना है, फिल्म जॉनी मेरा नाम से है, लता जी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़। और सभी श्रोता अरविंद कुलकर्णी जी, मुकेश वालिया, चंद्रकांत रोड़े जी और चेतन कुमार जी और हमारे बहुत सारे श्रोता दूर दूर से जुड़ते हैं हमारे साथ, अजीत जोशी जी और सुमित प्रकाश मोदले, सुनील गायकवाड़ जी, प्रकाश शिंदे जी और साथ ही साथ राशि द्रविड़ जी और संजय दर्शन जी, मुकेश कश्यप जी, दत्ता केदार, आकांक्षा, मनोज सिन्हा, दत्तात्रेय आदत जी, सुनील जंगम जी, धनंजय जी, मेहर अरोरा जी, आप सभी से हम क्या कहें, फरमाइश आपकी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। शंकराचार्य जी हमारे साथ तेलंगाना से जुड़ते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हितेंद्र दास जी, आप असम से जुड़ते हैं हमारे साथ, तो हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपने भी उन गीतों को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया। और फिलहाल इसी गीत के साथ मुझे अन्य निर्मल श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए ख्याल, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा, ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
3: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने

0: हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र सिक्किम विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Mark de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Barendra Shah, while speaking

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है, जबकि 4000 से अधिक लोग अब भी लापता है। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट

परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 11:07 और हम आप पहुंचे हैं गजलों की दुनिया रंगे महफिल में। रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो और स्टूडियो में मैं प्रज्ञा तिवारी। आइए गजलों को सुनते हैं, समझते हैं और गुनते हैं।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

और अब वो समय जब मैं लूंगी आपसे आज के लिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर होगी बात। तब तक गुनगुनाते रहिए जिंदगी की सुरीली और कभी कभी बेसुरी हो जाने वाली धुनों को। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय बाय।

चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है, डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में भारत ने मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमान लीजिंग और वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर चर्चा हुई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल कल से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपने दूसरे मैच में हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: भोपाल। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेन

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है डॉलर

प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ कल से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। और महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपने दूसरे मैच में हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दी है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 करोड़ डॉलर का प्रवाह हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन राय नायडू की अध्यक्षता में भारत में मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमान लीजिंग और वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर चर्चा हुई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे

के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल कल से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपने दूसरे मैच में हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉल्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रॉन्केन भी भारत आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की भारत की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। लगभग 4,000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। ये उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा।

के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपना दूसरा मैच हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बोर्ड डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रानकेन भी भारत आए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। यह उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। भारत पहली बार हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती सिवरफ्रंट में आयोजित की जाएगी, जिसमें

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।